तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड कहो नानक बोलो जी वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू जी। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरू जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समरकै गुर नानक लई त्याहे फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नाउ निधावै ताए सब थाई होए सहाए। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाए। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ते अंतर के खालसा जी साहिब बोलो जी। हे निमाणियां दे माण निताणियां दे ताण निउटियां दी ओट निआसरियां दे आसरा धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आप जीयां दा कोटान कोट धनवाद शुक्र है। आप जीयां ने अमृत वेले तो दर्शन दीदार बख्श के निहाल कीता है। शाम दे दीवाना दी समाप्ति तो उपरंत आप जीयां दे पावन सरूपां दी सुखासन दी सेवा पावन बाणी सोहिला साहब जी दे पाठ होए हन। सतगुरु समुची सेवा निभाउंदे आ बाणी पढ़दे आ हजूरी विच विचरदे आ होईयां भुल्लां दी खिमा बख्शणी अगों तो सुमत बख्शणी जी। समूह संगत दी हाजरी तिल फुल भेटा दर पर

0: करे जित सर जाए, सो करे जित सर जाए सुध।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।

एक समाइन के करे गावना, जननी जानत सुत वड होत है, इतना को ना जाने जे दिन दिन अवत कटत है। मोर मोर कर अधिक लाड तर पेखत ही।

अनेक अनेक भोग राज बिसरे प्राणी संसार सागर पे अमर पिया माया मूठा चेतस नहीं जन्म गवायो आलसिया बिखम कार पंथ।

मन प्रगट पिया है पेखियल धर्म राओ तै तै कर दल करन महाबली तिन अगलड़े मैं रह न जाए जे को मुँह अपदेश करत

पंडिया अब कुछ कहना जाई, सोर नार गान गंधरा भजन मोहे, तेरे पियो तेरी पवन मखे अली लाई, राजा राम अनहद किंगरी वाजे, जाकी दृष्ट नाद लिव लागे, रहो पाठी गगन संगिया अर चंगिया, कनक कल सेक पाया, तिस में तार चोए अत निर्मल, रस में रस

दुख बन को मत परम लागा। चेत राम नाही जामपुर जाएगा, जन बिचरे अनरादा, रहाओ बाल बनोद।

सरोज पाल पलाए, क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई, मिल सत्संगत खोज दसाई, बीच संगत

मिल संगत मन नाम बसाई, हर प्रभ अगमे अगोचर स्वामी, मिल सतगुर हर रस कीते जियो, तन तन हर

बिन देखे गुरुदरबारे जियो हो कोली ज्यो कोल कमाई तिस सच्चे गुरुदरबारे जियो रहो पाग हुआ गुरु संत में।

तीसरा सियाया जिन भेद लिया, ज्योति जोत मिली सुख पाया, जन नानक एक पसारिया जियो। माझ महला चौथा जित कर पीर सुहाग बनाया, तित कर सखिए मंगल गाया, आनंद बनोद ते कर सोहे, जो तन कंत

तू संतन का संत तुम्हारे संत साहिब मन माना जियो। तू संतन की करे प्रीत पाला संत खेले तुम संग गोपाला अपने।

से परापत हर हर नामा जिस मास्तक पगीठा जियो। हर एक सहत आया बरसाने बथेरे जैस लग तैस लग मुक्त पे कनेरे। नाम नदाना गुर

हर हर में निद सिद रिद हर हर मेरे जन्म पदार्थ गैर गंभीरे लाख कोट खुशियां रंग रावे जो गुर लागा पाई जियो दर्शन देखत पे पनीता सगल उदारे पाई मीता अगमय गोचर सभौमी अपना गुर कृपा ते सच त्याई जियो जाको खोजे सर भी पाए बड़पागी दर्शन को बिरला पाए ऊचे अपारे गोचर थाना ओ महल गुर दिखाई जी।

उठत सोबत जागत आरती आये सगले अबरदा जियो नाम औखद मुको साधु दिया किल बिख काटे निर्मल थिया आनंद पिया निकसी सब पीड़ा सगल बनासे दरदा जियो जे सका अंग